0: I'm sure सभी गाना चाहते हैं, but we know that acknowledgement is what matters for an artist.
1: जी हाँ, और मैं काफी दिनों से एक स्पेस अभी भी हमारे टीम में बचा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद आप ट्राई करना चाहोगे क्रिटिक
0: मैं
1: का.
0: पक्का ट्राई कर सकती हूँ, बट आप डिसाइड करो कि ये लास्ट शो तो नहीं करना चाहते आप.
1: मुझे क्रिटिक चाहिए टीम में. जब आशा भोसले जी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप भी से बचपन से उसके साथ गीत सुनते आए होंगे.
0: जी, नीडलेस टू मेंशन कि आशा भोसले जी का गाना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ऑल्दो शी स्टार्टेड हर करियर एज लता मंगेशकर जीज यंगर सिस्टर, बट उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और उनकी जर्नी हैज बीन वेरी वेरी इंस्पायरिंग. आई फील नॉट इंटेंडिंग टू कंपेयर विद एनीबडी एल्स, लेकिन जिस तरह जिन मुश्किलों का सामना करते हुए ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कलाकार घर में होते हुए इस मुकाम तक पहुंच पाना बहुत बड़ी बात है. और हम जान सकते हैं कि उनका पहला गाना 1948 में उन्होंने गाया है, बट शी डजंट हैव समथिंग वेयर यू कैन से एज लास्ट. काफी एंड टुवर्ड्स हर लाइफ तक वो म्यूजिक को कंट्रीब्यूट करती रही हैं और सभी को उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है. कितने ही कलाकारों के नाम हम ले सकते हैं इंडस्ट्री में जो सिर्फ आशा भोसले जी की वजह से ही बने हैं टू एक्चुअली बी ऑन टॉप. आई वुड जो मेरे दिमाग में आती हैं वो हेलन जी हैं, कि आशा भोसले जी के गानों ने हेलन जी को उस मुकाम पर पहुंचाया जो शायद उससे पहले वॉज नॉट हैपनिंग फॉर हर. सो उन्होंने बहुत लोगों के लिए she has been, you know, that stepping stone or that inspiration.
1: Yeah, I definitely agree with you because हम जो actual practical जिंदगी में जब रहते हैं we do certain things, लेकिन society may not accept it, या तो फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोग कहेंगे you know why are you doing that, या तो फिर आप successful हो गए या नहीं हो गए and then आपको second third thoughts देना पड़ता. But look at आशा जी, despite all those obstacles she still became the legendary artist or superstar ban chuki hai. To isi tarah zindagi mein I think if you have determination you will be successful. To that's an inspiring inspiration that you can take away from her life. Agar aap study karoge to I hope that you can take that from her. Aur isliye main kahunga ki aapka kuch bhi ideas ho just move on aap try karo, koshish karo, and then don't worry too much about what people say. Keep on moving ahead. तो अंजलि जी, आप तो गायिका हो, यू आर अ सिंगर एंड आप जो गीत भी गाते हो काफ़ी पर्सनलिटी गाते हो, और आपका जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स थोड़ा कुछ अलग ही होता है बिकॉज आई नो यू कम अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस. और आशा जी के अगर विषय में अगर देखा जाए देन शी वॉज ऑन दोज काइंड ऑफ सिंगर्स की स्ट्रेट हो, उसको वो गाना मिल गया जो मेन हीरोइन या जिसको गाना था सॉन्ग्स और मोर लाइक खलनायिका के ऊपर होता था, या तो फिर कैबरेट लाइक अभी हम क्या कहते हैं उसको आइटम सॉन्ग्स. तो अभी तो काफी इज्जत से हम लेते हैं नाम आइटम सॉन्ग, लेकिन उस जमाने की जब बात करते हैं आई डोंट नो कितना रिस्पेक्ट मिलता होगा जो खलनायिका गीत होता था या तो फिर कैबरेट जो सॉन्ग्स होते थे. आप बताइए आपका क्या विचार है.
2: मैं अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ आशा जी के बारे में. तो आशा जी 10 साल की थी जब उन्होंने अपना पहला मराठी सॉन्ग रिकॉर्ड किया था. आशा जी ने एक इंटरव्यू में जो प्रणव गोस्वामी जी ने उनका इंटरव्यू लिया था उसमें उन्होंने बताया था कि काफ़ी मुश्किल था उनका सफ़र, क्योंकि लता जी ऑलरेडी थी, वो एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी, तो उनके साथ कम्पीट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था. तो आशा जी ने डिसाइड किया कि अगर मैं दीदी की तरह ही गाऊंगी, क्योंकि आवाज़ें बहुत सिमिलर थी दोनों की, तो वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगी. आशा जी ने बताया था इंटरव्यू में कि वो इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश मूवीज़ काफ़ी सुना करती थी अपने दौर में, तो वो काफ़ी इंस्पायर होती थी जिस तरह से इंग्लिश गाने गाए जाते थे, क्योंकि वो तरीका हिंदी म्यूज़िक का नहीं था. वो बताती हैं कि हिंदी म्यूज़िक में काफ़ी फ्लैट वॉइस में गाना गाते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती थी उस टाइम पे. तो इंग्लिश म्यूज़िक से उन्होंने वो इंस्पिरेशन ली कि मैं अपनी आवाज़ चेंज करूँगी, मुझे अपनी एक अलग लीग बनानी है, मैं कुछ करना चाहती हूँ. तो उन्होंने वो इंस्पिरेशन लेकर गाने शुरू किए. जैसे विनेश जी कैबरे सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं के दौर में वो गाने फेमस होने शुरू किए थे. वो बताती हैं कि एक टाइम था जो इंडियन रेडियो उस टाइम पे चला करता था, वो कई सॉन्ग्स उनके डिनाई कर देते थे, आने ही नहीं देते थे वो रेडियो पे वो गाने. तो एक और कंपेटिटर था तब सीलोन रेडियो करके, उससे उन वो फेमस होना शुरू हुई उन गानों की बदौलत, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते थे जो वर्ड्स उस दौरान में फैमिली को नहीं सुनाए जा सकते थे. फिर भी वो डटी रही, उन्होंने इतनी वेरिएशन

0: अपनी वॉइस को दी कि वो हर तरह का गाना गा सकती थी, चाहे आप कोई सैड सॉन्ग ले लो, चाहे आप गजल ले लो, चाहे कव्वाली ले लो, कैबरे सॉन्ग्स जो फेमस ही उनकी वजह से हुए थे, तो वो इतनी रेंज उनकी, उन्होंने 13,000 से ऊपर सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग करी है जो
1: आई थिंक उसका नाम है
0: रिकॉर्ड
1: गिनीज
0: है,
1: बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में
0: इसी
1: इसी
0: की
1: का नाम
0: वजह
1: है
0: से
1: जी.
0: रिकॉर्ड है कि उनकी रेंज इतनी है। बट उन्होंने क्या बात बोली ना उस इंटरव्यू में जो मुझे बहुत हम्बल खुद को भी फील कराती है, कि आप चाहे कितने ही बड़े कलाकार हों, आप दूसरे को ट्रीट कैसा कर रहे हैं ना, वो डिसाइड करता है कि आपको प्यार कितना मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं जो भी बोलती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, ऑडियंस मुझे इतना प्यार देती है सिर्फ इसलिए कि मैं उनको कैसा ट्रीट कर रही हूँ। तो आर्टिस्ट तो है वो, और इतने हम्बल आर्टिस्ट हैं कि उन्होंने अपने अंदर वो एक एरोगेंस आ जाती है ना जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो, कभी आने नहीं दिया। उन्होंने लोगों को फिर भी वैसा ही ट्रीटमेंट दिया, हम्बली रही वो, और आज भी उनके जाने के बाद विदेश में हर जगह उनकी चर्चा है, कोई भूलता ही नहीं है और भूल सकता ही नहीं है जो वो लेगेसी छोड़ के गई है गानों की। मेरे जैसे सिंगर जो बिल्कुल अनट्रेंड है, रॉ है, हम सी गाना ही उनका चुनते हैं क्योंकि वो रेंज इतनी है, इतना कुछ हमारे लिए छोड़ कर गई है कि हम हार नहीं मानते। हम एज अ फाइटर हम लोग भी लगे रहते हैं कि ठीक है, हर किसी को नहीं मिलता वो मौका कि वो सीख सके, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारो, आप बढ़ते रहो आगे। आप लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो बस उस पर ध्यान दो, अच्छे रहोगे सब अच्छा होगा लाइफ में। सो आशा जी थैंक यू, आप इतनी अच्छी लेगेसी हमारे लिए छोड़ कर गई हैं, एंड वी आर वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। थैंक यू विनेश जी ये शो ऑर्गेनाइज करने के लिए।
1: थैंक यू अंजलि जो आने के लिए. और अभी जो कुछ गीत भी हमने कुछ निकाला यहाँ पे ना, होप करेंगे कि आप गा सको, या ना होप करेंगे कि हमारा जो जो टेक्निकली हम उनको सपोर्ट कर सकें. विल गिव इट अ गो थोड़ी देर में. लेकिन चलो हम बढ़ते हैं अनुराग, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा बात करोगे, लेकिन फिर भी जब हम आशा जी की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर गीत है जो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, या तो फिर कभी कभी आप उसके गीत गुनगुनाते हो, कोई भी, जब डिपेंड्स आप किस जगह पे होते हो. कभी कभी किसी को मनाने के लिए भी गा सकते हो, कभी कभी आप बहुत दुखी हो तो तभी शायद आपको गीत याद आता होगा.
2: विनेश जी देखिए, आशा जी के जो जैसा कि अंजलि जी ने कहा अभी कि उनका जो सिंगिंग जॉनर है इट हैज़ अ वाइड रेंज, इनफैक्ट द स्पेक्ट्रम ऑफ द रेंज एंड द जॉनर इज अक्रॉस द बॉर्डर। उन्होंने किसी किसी भी ऐसा जॉनर में है जहाँ पर सिंगिंग न की हो, और उन उन गीतों में से अगर आप मुझे बोले चुनने के लिए इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि म्यूजिक लवर होने के नाते मैं ऐसा कोई जॉनर नहीं है जिसको मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकूँ। हाँ ये बात अलग है कि मूड जिस तरह का रहे उस हिसाब से कभी कभी कुछ तरह के गाने अच्छे लगते हैं, जब ये हम बहुत खुश हों तो मस्ती वाले गाने अच्छे लगते हैं। आशा जी के बेशुमार मस्ती वाले गाने हैं, ड्यूएट गाने किशोर जी के साथ उनके इतने हैं मस्ती वाले कि आप कभी कभी तो उस मूड में नहीं है और वो गाना सुन के तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं। तो उनमें से भी कि कोई एक गीत चुनना इम्पॉसिबल।
1: जी हाँ
2: अगर आप
1: बिल्कुल.
2: आज सैड हैं या आप ना किसी तरह से शो में जा रहे हैं तो उस तरह आपको रिलैक्स गाने सुनने का मौका है। गजलें आप पसंद करते हैं, कव्वाली अगर आप पसंद करते हैं स्टेज के मामले में, वहां बैठ के सुनना चाहते हैं, तो उनमें भी आशा जी की इतनी और कुछ कुछ तो अवार्ड विनिंग कव्वालियां और गजलें भी हैं, तो उनमें से भी चुन पाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं इम्पॉसिबल है। तो मैं ये अपने ऊपर नहीं ले सकता कि मैं कोई शॉर्टलिस्ट करूं गाने को, ना आई एम सॉरी। लेकिन हाँ मैं व्यूअर्स के ऊपर ये डेफिनेटली ये डालूंगा कि आप आशा जी के नाम से जिस जॉनर में भी गाना सुनना चाहते हो आप लिखें, आपको एक नहीं 50 गाने उस जॉनर के मिल जाएंगे और आप सारे गाने एंजॉय करोगे।
1: जी बिल्कुल. बिकॉज कभी वैसा भी होता है कि काफ़ी कुछ, इफ़ यू आर गोइंग बैकवर्ड्स, लाइक अब अगर हम बैकवर्ड्स अगर जाएँ, अभी तो सभी कुछ बदल रहा है, लेकिन उस वक्त काफ़ी कुछ मेल डोमिनेटेड होता था. अभी प्रोड्यूसर ले लो, डायरेक्टर ले लो, सॉन्ग राइटर ले लो, अभी जितना भी हम नाम सुनोगे ज़्यादा करके जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, म्यूज़िक राइटर्स, सब मेल जो भी डोमिनेटेड होते थे. और जो फीमेल कुछ नाम सामने आते थे, और आशा भोसले जी की अगर बात किया जाए, देन शी सेंग विद मोहम्मद रफ़ी लाइक 900 कुछ सॉन्ग्स, फिर किशोर कुमार के साथ 500 कुछ, एंड देन इस तरह बड़े बड़े कलाकार के साथ में उसके जो जोड़ी बनी, एंड देन दे संग दो सॉन्ग्स, ताकि और उस सॉन्ग्स के बदौलत आई थिंक चेतना मेंशन दैट कि जो एक्टर्स थे, और एक्टर्स तो थे ही, लेकिन मूवीज़ जो सुपरहिट होती थी. अभी
0: जी
1: देखो कितने गाने से अमिताभ बच्चन के साथ में उसके आया होगा, जीना तमान पे आया था.

0: और तो सभी बड़े बड़े एक्ट्रेस उस टाइम के सभी ने जो, और अब आई वाज क्वाइट अ बिट सरप्राइज्ड बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि शी केप्ट ऑन सिंगिंग इन द लास्ट काइंड ऑफ वो गाना गाते रही है नए नए मूवी जो भी थे उसमें भी उसका जो गीत था. तो बिकॉज हम क्या क्या है कि जस्ट बिकॉज वी डोंट सिंग तो हम ये नहीं देखते कि कौन गा रहा है, हम सिर्फ गीत ही रिमेंबर करते हैं. बट ऑफ कोर्स हु आर सिंगर्स देन दे विल
1: एज अर्ली एज, अभी हम 2026 में, एज अर्ली एज 2025 में उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में कहा है, प्राइवेट उनकी ग्रैंड डॉटर का प्राइवेट एल्बम है लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किया है और वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो गूगल पे देख सकते हैं.
0: और एक चीज़ और मैं मेंशन करना करूँगा जो हमें अभी सुन रहे हैं, हालांकि मैं भी मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि शायद जो एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेते या ग्रांटेड लेते हैं, अगर आप आशा भोसले अगर उसकी जो फैमिली हिस्ट्री देखोगे देन दे वेर वांटिंग टू स्टडी लेकिन उनको जो मौका नहीं था पढ़ने के लिए. तो अगर आप काफ़ी फैमिली से पूछोगे देन दे वांट टू स्टडी लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था और उनका वो भी समय था कि वो लोग छुप के गए थे ना पढ़ने के लिए. और अभी हमारे पास पढ़ाई का सभी कुछ रिसोर्सेस है लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते. तो वक्त वक्त की बात है, बट डू अप्रिशिएट दोज थिंग्स, हम सभी कुछ बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. तो चलो चेतना आप बताइए, आपका कोई खास गाना जो आप गाते नहीं भी शायद होंगे बट आपके दिमाग में वो धुन बजने लगता होगा शायद जब आप नाराज भी होते होंगे.
2: लाइक अनुराग मेंशन की आशा जी के इतने रेंज में से एक गाना चूज करवाना वाकई बहुत मुश्किल है. और कभी कभी लाइक ही सर ऐसा ही होता है कि हम वो गाना सुनने लगते हैं और उसी फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं और मूड रिफ्रेश हो जाता है. लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी बायस होके एक गाना बोल ही देती हूँ जो मुझे इस वक्त दिमाग में आ रहा है, वो है सलोना सा सजन है और मैं हूँ. मुझे ये गाना बहुत ही, उनका ये गीत बहुत ज्यादा पसंद है. मैं गाती नहीं हूँ लेकिन मैंने कई बार अनुराग को रिक्वेस्ट किया है मेरे लिए गाने के लिए.
0: जी हाँ,
2: इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल.
0: जी आप तो अपने ओ नया बोल दिया तो अनुराग को तो गाना ही पड़ेगा लेकिन अभी तो बीमार तो उसको माफ कर देते हैं. फिर हम पकड़ेंगे किसी दिन.
2: पर
0: तो,
2: हमारे बहुत सारे इमोशंस उनके गानों के साथ कनेक्ट हुए हैं क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि काफी अनकन्वेंशनल चॉइसेस की उन्होंने. लता जी के गाने वर वेरी, दे वर वेरी रोमांटिक बट दे वर सो मच इन द सेम लीग आई वुड से. फैमिली ओरिएंटेड थे, सबके साथ सुन सकते थे. बट आशा जी के गानों में मुझे मेरे बचपन में भी मतलब एक फन एलिमेंट एकदम से आ जाता था. शायद बहुत सारे ऐसे हम मेरे जैसे बहुत लोग रहे होंगे जो वो मोमेंट्स, वो फन, वो मस्ती, वो सपने हमने उन गानों के थ्रू जिए हैं. शायद हमने खुद अपने आप को नाचते हुए देखा है उन गानों पर और इन्जॉय, या फिर वेन वी वर इन आर रोमांटिक एज, यू नो, उस वक्त वो गाने कनेक्ट कर पाना अपने पार्टनर के साथ, विच वॉज मोर फॉर मी. आशा जी के गानों के साथ मैंने वो ज़्यादा कनेक्ट किया देन विद एनी अदर सिंगर. और जब ये बहुत ही सैड इंसिडेंस हुआ और हम वी लॉस्ट हर, एक्चुअली मी एंड अनुराग वर डिस्कसिंग कि अब हम एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में हम किसके बारे में बात करेंगे, कि लेगेसी किसको पास ऑन होगी, कौन उनकी जगह ले सकेगा. एंड वी फेल्ट कि शायद इट्स अ गोल्डन एरा गॉन.
0: जी हां, सही सही बात है बिकॉज शी स्टूड देयर फॉर डिकेड्स, काफी जो डिकेड्स में थी. और जब हम अपनी बात करेंगे तो आई मे बी अ फ्यू इयर्स बोल सकते हो. तो हमारे जो कलाकार हुआ करते थे कुमार शानू और रोहित नारायण, उनके गीत जो हम सुन के यू नो, बट आई थिंक एक्चुअली जब हम डिफरेंट जनरेशन की बात करें दोनों में भी आशा भोसले उड़े बिंदे दे काइंड ऑफ. और उस दिन अंजलि एंड अनुराग यू डिड द ड्यूट.
3: Oh my God, that was such a hit. बिल्कुल, मतलब हम शायद हमने खुद भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा हो जाएगा.
1: और देखिए उस दिन थर्सडे को ही ये अभी भी श्रोताओं और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जलसा फिजी रेडियो का फेसबुक पेज वापस स्टार्ट हो गया है और ऑलरेडी एक जलसा टैलेंट शो का एक फेसबुक पेज है. तो इन दोनों पेजेस पे वो प्रोग्राम अवेलेबल है और विनेश जी वो प्रोग्राम को लाते हैं, रजनीता जी एंड विनेश जी. जो टैलेंट शो है उसका ये फिफ्थ सीजन है और ये हमने थर्सडे को थर्ड एपिसोड शूट किया था. मुझे हमें मौका मिला था आशा जी को इसके थ्रू ट्रिब्यूट देने का और वो हसीना जुल्फों वाली मैंने इनके अंजलि जी के साथ में वो परफॉर्म किया था. और इस गाने की भी एक अपनी, देखिए क्या होता है जब लेजेंडरी आर्टिस्ट की हम बात करते हैं ना, तो उनके हर एक लेजेंडरी गाने के साथ कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी होती है. तो इस कहानी की मैं, इस गाने की मैं, ये गाना अंजलि जी ने चूज किया था क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कोई अपना पसंद का गाना चूज करो, हम उसको कोशिश करेंगे निभाने का. तो हमने डिस्पाइट ऑफ बीइंग तबीयत खराब होती है कि हमने किया परफॉर्म. इस गाने का भी एक बड़ा अच्छा एक इंसिडेंस है जो आर डी बर्मन साहब खुद उन्होंने अपना नरेट किया.

0: इंटरव्यू में कि ये नासिर हुसैन जी ने पहली बार इनके साथ टीम अप किया था ओ हसीना जुल्फों वाली के लिए, और ये इस तरह के जॉनर का शम्मी कपूर जी ने पहली बार आर डी बर्मन जी के साथ में उनके स्टूडियो में देख करके ये वो रिएक्शन दिया था अपना कि इस तरह का गाना इस जॉनर में पहली बार वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और शम्मी कपूर जी उस रिकॉर्डिंग के टाइम पे मौजूद थे और नासिर हुसैन साहब खुद भी मौजूद थे उस रिकॉर्डिंग में। और जब आर डी बर्मन इसको रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो रिकॉर्डिंग में गाने की तरफ नहीं देख रहे थे, वो शम्मी कपूर जी और नासिर हुसैन जी के रिएक्शन को देख रहे थे, क्योंकि उनका सेंस ऑफ म्यूजिक गाने को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन उनका रिएक्शन देख करके जैसे ही गाना खत्म हुआ दोनों ने टेबल बैंक किया और बोला हिट, और इस तरह से गाने का स्टोरी बना। तो ये बात अभी रिसेंटली आर डी बर्मन जी ने, मैंने देखा उनका इंटरव्यू जब उन्होंने, काफ़ी पहले आया था ये इंटरव्यू, बट इसकी एक स्टोरी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और जैसा कि विनेश जी ने कहा कि दो एपिसोड अभी भी रहते हैं जून वाले एपिसोड में, एक अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें विनेश जी से, और अंजलि जी प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहें तो।
1: इस गाने के जो हमने परफॉर्मेंस दिया था उसकी ये स्टोरी है कि हमने डिसाइड तो कर लिया था गाना कि हम क्या गाने वाले हैं, बट हम दोनों में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया था वो गाना साथ में. तो वो जो हुआ उसी दिन हुआ. और होता है ना कि आप कनेक्ट कर जाते हो गानों से, जैसे हम बात ही कर रहे थे आशा जी के गानों के बारे में, कि आप इतने सारे जॉनर्स के गाने उनके, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप कनेक्ट कर जाते हो. और जब दो आर्टिस्ट मिलते हैं तो आई थिंक वो एक जो समा बन जाता है ना, जब आप फील करते हो गाने को. और ये रोहित जी ने भी बोली थी कि एक गाना गाना होता है, एक गाने को महसूस करना होता है. तो आई थिंक हम दोनों ने वो महसूस करके जब वो गाना गाया तो वो वही ऑडियंस को भी पहुंचता
0: पसंद
1: है,
0: आया,
1: तो
0: यस
1: इसलिए ऑडियंस ने इतना पसंद किया उसको, परफॉर्मेंस को. एंड
0: जी हाँ,
1: फ्रॉम
0: बढ़िया।
1: ऑडियंस पर्सपेक्टिव मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा थे और मैं दिस साइड ऑफ द कैमरा थी.
0: जी
1: इट वॉज फ्लडेड विद हार्ट्स. इट वॉज फ्लडेड, आई कुड सी बिकॉज आई वॉज वॉचिंग ऑन द स्क्रीन. आई कुड सी द शो वॉज फ्लडेड विद हार्ट्स. सभी लोगों ने शो को बहुत पसंद किया है.
0: जी हाँ,
1: इट्स
0: ये
1: रियली
0: नॉर्मली
1: लव्ड.
0: ये जो शो होता है ये उस जिस वक्त होता है उसी वक्त लाइव रिकॉर्ड भी होता है, लाइव फेसबुक पे लाइव भी रहते हैं। तो हमारे साथ चेतना जी जो जुड़ी थी वो फेसबुक लाइव के थ्रू ही जुड़ी हुई थी।
1: जी
0: मैं क्योंकि जब हम हमारे साथी कलाकार गा रहे होते हैं तो मैं सामने तो विटनेस कर रहा ही होता हूँ लेकिन अपना फेसबुक लाइव रिएक्शन के लिए जरूर देखता हूँ। तो जो चेतना जी ने कहा कि मैं भी लाइव था उस समय वहां पर होने के बावजूद, लेकिन मैं रिएक्शन के लिए होता हूँ, तो मैंने देखा रिएक्शन काफी अच्छे, अपने गाने के नहीं दूसरे गाने के जो इन्होंने गाए उन पर काफी अच्छे रिएक्शन है। प्रोग्राम वॉज रियली नाइस।
1: यस
0: जी
1: बिल्कुल.
0: नो, थैंक यू सो मच, और आपको मेहनत करने के लिए। आई नो यू हैवन प्रैक्टिस टुगेदर बट आई एम श्योर कि अलग अलग तो आपने अपना जो पार्ट तो ज़रूर प्रैक्टिस करके आए हुए थे, वो तो दिख रहा था। बिकॉज वही होता है कि हमारे जो मंच पे जब आर्टिस्ट आते हैं आई एम सो ग्रेटफुल कि एवरीबॉडी डू कम प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं होता है कि कोई बिना प्रिपेयर्ड आता है, तो ऐसा अभी तक हमारे साथ में तो नहीं हुआ है। जब भी हमारे साथ में कोई भी आर्टिस्ट आया है देन दे कम फुली प्रिपेयर्ड, विच इज़ गुड फॉर मी ही, बिकॉज वो लोग मेहनत तो लोग करते हैं लेकिन फिर हमारा क्रेडिट हमें मिल जाता है कि नो हमने अच्छा शो किया। बट ऑफकोर्स इट्स योर जो आप मेहनत करते हो और उसका जो फिर नतीजा है ना रंग लाता है बाद में। हमारे पास समय तो भागा जा रहा है, हमारे पास 5 शायद 6 7 कुछ मिनट्स होंगे, लेकिन हमारे पास एक गीत भी है। वी विल ट्राई वन सॉन्ग, एक चलो हम गीत ट्राई करते हैं। आई थिंक इसके बोल है ये समा है ये प्यार का। स्क्रीन में आपकी ओर करता हूँ, होपफुली आप देख सकते हो।
1: जी
0: ठीक है, तो मैं प्ले बटन दबा के तब आपकी ओर करता हूँ। यू गॉट योर
2: हेडफोन है?
0: हेडफोन तो आपके पास है ही। चलो मैं एक छोटी सी कोशिश करते हैं, सी इफ इट वर्क्स, बिकॉज आज हमारे जो टेक्नीशियन है, साउंड टेक्नीशियन साहिल जी हमारे साथ में नहीं है। शिवनील है कैमरा के पीछे, बट आई डोंट थिंक शिवनील हमें हेल्प कर पाएगा। तो चलो हम ये कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। आई थिंक अभी म्यूटेड है। हाँ ठीक है।

0: थैंक यू सो मच अंजलि. तो आई थिंक अनुराग हमें क्लिप करना पड़ेगा ना.
1: हाँ जरूर जरूर. देखिए अपने अपने लिमिटेशंस के अलावा बावजूद लिमिटेशंस के आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ डेफिनेटली कि हमारे जो मेन टेक्नीशियन विनेश जी आज निभा रहे हैं, बट हम साहिल को मिस कर रहे हैं. उनके रहने से हमें ये सहूलियत होती है कि यदि हम ट्रैक पे गाना गाना चाहें तो वो हमें डेफिनेटली किस तरह से हेल्प करता है. बट जितना भी लिमिटेशन आज लिमिटेशंस के बावजूद आपने अच्छा गाया, बहुत अच्छा, और विनेश जी ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया.
2: थैंक यू,
0: वेरी गुड. थैंक यू सो मच. जो लोग सुन रहे हैं आपको बता दें ये कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो नहीं कहेंगे, दिस इज़ अ रेडियो स्टूडियो और यहाँ पे वो फैसिलिटीज तो नहीं है. सो वी जस्ट ट्राइड टू मैनेज व्हाट वी कैन. तो जैसे हमने बोला था गर्म वक्त के अपने जो नज़र दौड़ाते तो हमारे पास बहुत नहीं, 2-3 मिनट बचे हुए. अनुराग से हम गुजारिश करेंगे अगर 1-2 लाइन, आई नो आप बीमार हो लेकिन फिर भी अगर 1-2 लाइन बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के अगर आप हमें सुना दें, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम फिनिश करना पड़ेगा बिकॉज हम फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन जो लाइव वीडियो है वो चालू रहेगा ताकि हम जाते जाते अंजलि से एक गीत और सुनना चाहेंगे बिकॉज हमेशा मौका नहीं मिलता है नो.

0: और इन रोल्सटन जो अलग से एक सिटी या डिस्ट्रिक्ट हम कहेंगे या रीजन हो गया ना, तो काफी बढ़ गया है रोल्सटन.
1: जी बिल्कुल, अब तो एक एंड रोल्सटन से अप डाउन तो हम डेली करते हैं, इसलिए हमें तो आदत हो चुकी है, यहां से फिर हमें जाना ही है.
0: फिर उधर से आपको हम बार बार आपको हम तकलीफ नहीं करना चाहेंगे, तो हम अंजलि आई हुई तो हमसे जीते गवाही लेंगे जाने से पहले. तो चलो आप शुरू हो जाइए, हमारे पास दो तीन मिनट
1: समय कम होने के बावजूद मैं कोशिश करूंगा. तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि चूज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ चेतना की तरफ से उनकी उन्होंने हिम्मत करके एक गाना चूज किया. जब चूज किया तो मैंने सोचा चलो किसी और ने चूज किया है, मैं कोशिश करता हूँ आशा जी का वो गाना गुनगुनाने के लिए. तो मैं थोड़ा सा कुछ चार लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ.

थैंक यू सो मच अनुराग जी. हमारा जो समय है अब यहीं खत्म होता है, तो जो लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी में जुड़े हुए हैं तो उसको हम अलविदा कहना चाहेंगे कि इस वादे के साथ में हम जुड़ जाएंगे नेक्स्ट सैटरडे इसी तरह इसी फ्रिक्वेंसी पे फ्रॉम 5 PM फिर से आप हमें सुन सकोगे. लेकिन इस बार हमें आप माफ़ करना बिकॉज हमें अब जाना पड़ेगा. जो लोग हमारे साथ हैं फेसबुक में जुड़े रहिए बिकॉज वी विल गेट टू हियर वन मोर सॉन्ग फ्रॉम अंजलि फिर हम इसको समाप्त करेंगे. सो लेट मी जस्ट गेट दिस बैक.